ज्ञान दी जोत जगावन दे लई अंदर चात लगाउणा चंगा, मगर किसे दे लगन नालों अपना राह बनाउणा चंगा। मन बता दे पले दी खातर जावर नाल टकराउणा चंगा, उस खुदा दी रहमत अंदर मनुखता दे कम आउणा चंगा। हक सच ले

काम आना किसी के है एक बंदगी, एक बार ही मिलती है ये जिंदगी। काम आना किसी के है एक बंदगी,

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे।

खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास

दिल्लीए खैर मना लैनी आगे सच के सिंह सरदार असीं बाल अथरे हां साडिया मूड डिपेंड ने मत्ता असीं बाल अथरे हां साडिया मूड डिपेंड ने मत्ता सदके मुड साडे दे आगे करके वेलियां सत्था सदके

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए। चरखड़ियां ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

0: ना होवे क्या तेरे दाया तेरे है मैनू जीरा तुमिया। लो जी इसी सॉन्ग नंबर वन, सॉन्ग नंबर सेकंड और लास्ट सॉन्ग
1: जी।
0: जाने वालों मेरी हरे तो रखना, जाने वाले मेरी हरे सोच में शामिल रहना, कैसे अब पाना हो जो मुझे हासिल है, जाने वाले मेरी हरे सोच में शामिल रहना, मुझे हर नई रुत में मुझे भेजना खुशबू, हर नई रुत में मुझे भेजना खुशबू
1: जी।
0: तेरी खुशबू के बिना लगता है मुश्किल, जाने वाले मेरी हरे सोच में शामिल रहना,
1: वाह
0: जाने वाले मेरी हरे सोच में शामिल रहना, मेरी हरे सोच में शामिल रहना।
1: क्या बात है जी, क्या बात है जी। मुकद्दर जी कहंदे आ जी, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के
0: जी
1: वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्या बात है जी। ते बलवीर सिंह सैनी साहब कहंदे मोहम्मद जी बहुत दिल दे नाल गा रहे ने जी, क्या बात है जी।
0: शुक्रिया जनाब, जिंदे वास्ते रवि भुपिंदर जी,
1: थैंक यू जी, शुक्रिया जी जी। दोस्तों इस सांझी मुहम्मद जी ते जांदे जांदे मैं भी दो सत्रां अज साझियां करदा तुहाडे नाल, इह मेरियां अपणियां नहीं इस तरां जिहड़ियां लिखियां होईयां ने इह अपने बाबा नजमी होणां दीआं। ओह लिखदे ने कि मस्जिद मेरी तूं क्यों ढावे, मैं क्यों तोड़ा मंदर नूं, आ जा दोवें बहि के पढ़ीए इक दूजे दे अंदर नूं, सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदर दा, लहू ते तेरा मेरा लगना है तेरे मेरे खंजर नू, रब करे तू मंदर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नू, राम करे मैं मस्जिद वांगू वेखा तेरे मंदर नू, डुब्बे विच समुंदर बेड़े साथों हाले निकले नहीं, डुब्बे विच समुंदर बेड़े साथों हाले निकले नहीं, वेखो ढोल वजा के चले फोलन ओदे अंबर नू, कदे कदे ते ए भी कदे कदे ते एहो जही वी हरकत बंदा करदा ए, अपना मूँह लुकाउणा औखा हो जांदा है डंगर नू, असा नहीं आउणा बाबा तेरा मुड़ के मेला वेखण लई, शकलां वेख के देंदे ने वरतावे तेरे लंगर नू, शकलां वेख के दिंदे ने वरतावे तेरे लंगर नू। लो दोस्तों इसे ही खूबसूरत नज़म दे नाल आग्या लैने आ, ते सोमवार नू मिलन दे वादे दे नाल गल्लां बातां होणगियां, ते तुहाडा मेरा राबता फिर 9:30 भारतीय समय दे अनुसार जिहड़ा बनेगा 2:15 घंटे इसे तरह ही। ते कहिंदे ने कि बाबा नजमी जी एक नज़म होर उहनां दी सांझी करदा, मेरी अग दे उत्ते अपनी पा के अग, किधर चले भांबड़ बना के मेरी अग, दीवे नाल नहीं जाना इस हनेरे ने, दीवे नाल नहीं जाना इस हनेरे ने, रख तली ते अपने दिल नू ला के अग, एदे वर्गी दोजक दीवी होनी नहीं, चले जेड़ी इत्थे असी हंडा के अग, बुल्ले नालों हथ अंगेरे जावांगा जद मैं नचया अपने पैरी पा के अग,

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है।

तो ये जीवन भला है ये किस काम का, जिंदगी का सफर ये सुहाना बने, छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले, जिंदगी का सफर ये सुहाना बने।

सदा उसकी ही मौज में खुश रहे, जो सदा उसकी ही मौज में दास सच्चा, वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में दास सच्चा, वही तो है भगवान का। तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

0: जी दी रचना तो बाद उनमें फरीदकोट बस्ती साड़ी शहर है सुखविंदर कौर जी सदा देने जा रहे हैं वो आन ते अपनी रचना लेके हाजिर हो सुखविंदर कौर जी इस बार साड़े कवि दरबार के जो आ रहे हैं वह बठिंडा के शायर कुलदीप सिंह मंगी जी की एक गजल लेके हाजिर हो रहे हैं सुखविंदर कौर जी दुआबा रेडियो के हफ्तावारी कवि दरबार के निघा स्वागत है।
1: दोस्तों मैं सुखविंदर कौर फरीदकोट आप जी की नज़र मालवे की शान बठिंडे जिले का माण कुलदीप सिंह बंगी जो पेशे वजो एक अध्यापक ने उन्होंने लिखी हुई गज़ल आप जी सामने पेश कर जा रही हूँ। एक वारी जे झूठा ही तू दे जांदा तेरे वास कदे

बीते पल में याद कराता नहादा विश्वासिक दे गम दे मारू तली दे अंदर डाची कुमी सदरां दे चार चुफेरे

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बस ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां।

मैं सदा तेरे नादार उड़ा रेहानी निकल गया दार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रेहानी निकल गया दारोड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मेरे कुप हो नेरे नू

सब दरिया खेस घबराए सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी, गद्दे बेड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया, हार

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई।

ताई भैणने आनी बकरी पारोवे, भैणने आनी बकरी पारोवे, जांदी नहीं बराई। चाचे ताए बाबल तेनू अणखां दी गठ फड़ाई, सौरे घर जातीए कर लई फर्जां दी कमाई। जा सौरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई, जा सौरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई।

इस मिट्टी दे उत्ते खड़के तू कर दाए मनमानी, भला ना लोचे किसे दा बंदिया कर दाए नित हानी। मिट्टी सब कुछ चुप कर सहंदी रख दी।

0: तेरी ममटी ऊपर पंछी बैठ राग बिरहा अलाप देने, मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है। मेरे बिना तेरे ताले तो लैके इसी तक चंगाले गए ने, हुण अगरबत्ती दी नहीं मिट्टी तोड़ दी हवांक आउंदी है। हुण अगरबत्ती दी नहीं मिट्टी तोड़ दी हवांक आउंदी है। डोगी गेट ते सिर सुट के सौंदा जा बुथी ऊपर चुकी रोंदा है। डाकिया डाक सुटन वक्त शरबत जा चान उड़ीकदा है। मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है। तेरे बंद देख तेनू बंद देख कोई किराए ले मंगदा कोई खरीदना लोचदा है। तेनू बंद देख कोई किराए ले मंगदा कोई खरीदना लोचदा है। मैं त्रवक जांदी हाँ रोंदी हाँ तेनू पराए हाथ किवें सौंदे हाँ। मैं त्रवक जांदी हाँ रोंदी हाँ तेनू पराए हाथ किवें सौंप देवां। तू मेरे सुपनियां दा घर मेरे प्यार दा तू ही साक्षी है। तू मेरे सुपनियां दा घर मेरे प्यार दा तू ही साक्षी है। मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है। मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है। मेरे पुत्र दा घर भी प्यारा मेरा अपना है ना पराया है। मेरे पुत्र दा घर भी प्यारा मेरा अपना है ना पराया है। उत्थे रह के मैनू अपने पण वर्गा सुकून महसूस नहीं हुंदा। देश विदेशी बन पुत्र दा घर कुसा कुसा नहीं लगदा। देश विदेशी बन पुत्र दा घर कुसा कुसा नहीं लगदा। वो उदास रोशनियां दा घर होटल वांग वक्ती लगदा है। वो उदास रोशनियां दा घर होटल वांग वक्ती लगदा है। मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है। मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है। मेरे जीते जी तक तू मेरा ही है मेरी ही मलकियत है। मेरे जीते जी तक तू मेरा है मेरी ही मलकियत है। मैं फिर धूफ अते दीवे नाल तेरी आरती उतारनी है। कोसी कोसी धुप च बैठ पंछियां दा राग मल्हार सुनना है। कोसी कोसी धुप च बैठ पंछियां दा राग मल्हार सुनना है। अम्बरी छत नीचे तेरी निग्गी बुकल च आखरी नींद सोना है। अम्बरी छत नीचे तेरी निग्गी बुकल च आखरी नींद सोना है। मैं जानती हाँ कि मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है। मैं जानती हाँ कि मेरे घर तू मेरे बिना बहुत उदास है बहुत उदास है। धन्यवाद।
1: ਮੇਰਾ ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੁਲਦੀਪ ਦਰਾਜਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਦਰਾਜਕੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਦੇ ਗਿਓ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਬੇਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਥੋਂ ਨੀਂਦਾਂ ਰੁਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੁਸੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣਾ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦਰਾਜਕੇ ਜੀ।
2: ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਬੰਸ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤਰੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ।